0: प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करना, शब्द बाणी पढ़दियां होईयां भुलां दे खिमा करना जी। अज जिसने किता तन तन श्री गुरु गोबिंद महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़ी मनाई जा रहे हैं, सो आप जी सर्व संगतां नूं महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाईयां होवन जी। आओ हुण अगला समां सरवण करदे हां। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हमें का जगत में आयो, कर्म हेत को दे पठायो। हमें का जगत में आए, धर्म हेत को दे पठाए। जहां तहां तुम धर्म बिसारो, दुष्ट दोखियन फकर पिछारो। ऐह काज सरा हम जन्मन, समझ लो साधु सब मनमन। कर्म चलावन संत वारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन।
2: करांगे इस बार ओनली पांच दिन बनते जी। हुण मैं बेनती करदा साडे अति सत्कारयोग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा आप जी नूं राई बाणी दे कीर्तन सरवण कराउणगे। उन्हां दा समां रहेगा 5:30 तक, उस तों उपरांत शब्द चौंकी सोधा रहिरा साहिब जी के जाप होणगे। ते आप जी नूं इद्दां बेनती कीती जांदी कि आप इद्दां ही गुरु दरबार दी हाजरियां भर के गुरु साहिब जी बख्शिशां प्राप्त करी जाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

इहो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर दिखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई खालसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोई केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा

दुख उतपु खै खाई चली यह दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाय रहा साचे नाम की तिल वड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई ये सब मिलक आखण पाहे वड्डा न होवे घाट न जाए

सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगासु।

सत्संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ।

तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सत।

जो सेवह है जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावह है हर त्यावह तुद जी। से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप सुमासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेंती चौपाई।

दान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आसंगरिए, पूरन हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, वो जो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझ जू करे।

सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को फल मोह बद कियो, खट खट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंच

साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन से

हर नित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया न जाई। हर धन संची है भाई, जे हलत पलत हर हुए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर

0: सुनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला।

तेरे सूही महला चौथा जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसे होरत विद लया न जाय जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसे होरत विद लया न जाय हर धन संचिए भाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहा सत संगति संग हर धन कटिए होरते

बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन नीचले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनका हारू, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पारू। सिमरह से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लाग वेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता, सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जह महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पापर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जेह मार्ग इहो जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा तियाइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं लो कोट लखबाही, नाम जपत तै पार पराई, अनिक बिघन जय आई संघार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनिक जून जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौ मैला मल कबू न तूवै, हर का नाम कूट पाप कूवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साध कै संग, जे मार के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जे पैडै मंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जय महाप्यान तपत बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहा त्रिखा मन तुझ आकर कै, तह नानक हर हर अमृत बर कै, भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साधक मात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनू दान, मन तन रंग रत्ते रंगे कै, नानक जन कै बिरत बवे कै, पार जा हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही बेओ, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात इहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था, नाम की महिमा संतर दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विडभागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछे अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु सा

कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी तुमरी गाथा।

0: नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाय इष्टपदी। दस वस्तु ले पाचे पावे एक वस्त कारण विकोट गुवावे एक पी न दे दस पी हिरले। तौ मूड़ा कहो कहा करे जिष्ठा गुरु सो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साव अपनी देरा खात पीत वरतैन दुला अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रति ताप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्तु सिया गहरा कै प्रभु की आज्ञा मान मत है उसते चौगुन कर निहाल। नानक साहिब सदा दयाल अनक पांत माया के हेत सर पर होत जान अनेत। बिरख की छाया सो रंग लावै ओ बिनसै मन पुछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावै ने ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तान धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोगन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेखा हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भग साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजनन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन्नी पर पुकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय व्यर्थि साकत की आर जा। साच बिना कह होत सूचा वृथा नाम बिना तन अंध मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाये। मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पी नवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन मैं मर। जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह माने या पह आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाप से अनुसगल ते रहत सबक जाने आत्म की रहत जिस पाव है तिसले लड़ लाए तांत नंतर रहा सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सजाए अंग में नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद क्षति अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभाव है। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जब दर गय मान पाव है नान पत सेती कर जाव है। जे प्रसाद अरु कंचन देही लिव लाभ हो तिस राम सुनेही। जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरहु प्रभु ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देही नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपुखन पहरी जय मानो ति सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अशुभ हस्त सुवारी मानो तिस प्रभ को कबहू ना विसारी। ये प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरो प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई किसै त्याई जो एक कल खै हाँ उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बोदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद वाचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करन ना जे प्रसाद पिखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह सुमाव है सब प्रभ त्याग वरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागहो जे प्रसाद तुम प्रगट संसार किस प्रभ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तुम पावन सात रे मन मेरे तुता स्योराज जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहार गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम हुए सर्व निदान प्रभ तेरी मया पू कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगै हरनाथ नान किन कै कछु नहाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध का संग मुखूजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्म है सुमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतुंता वै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुख प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग न बीगा पै साध के संग ना ही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनयाई साध के संग न कबू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग वसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन बीच कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग यहाँ वहाँ सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध के संग न बिरता जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग नमन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लग्या प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जीता सुनै तेता बखियानै साध उपमा त्यो गुण ते दूर साध उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूछते मूची साध की शोभा साध बनी आई, नान साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवरना पेखे बिन कोई, नान के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो इष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लोक जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्य मान जैसे राज रंग को लाग तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक ज्यों बसदा को दै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानक ज्यों पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लाग जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछबुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसु, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुई सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी सम सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उतार है जो अंतर नाम सर में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक को अपर सगल निस्तार अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, हर त्रै रूप न भिख नेत्र, सादगी टैर संसंगीत, कर न सुने काहू की निंदा, सुख ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै, जय जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परसु, वैष्णु सो जी सुपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए ने कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल किच्छा नहीं बाच है, केवल भगत कीर्तन संग्राच है, मंत नियंत्र सिमरन गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप जड़ै वरै नाम जपावै, नानक वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सास पापा मन को वै, जिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मंथन अर्पय विष्ण परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तमै सोदै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के अवधि जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जून नयावै, वेद प्राण समृत बूझै मूल, सूखम जानै स्थूल, चौवरना को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहुवर नाम है जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सास संपावै जन कोई, कर कृपांतर उतारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व लोक का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहु जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सत राम दास हो आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गय परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगुर संगा तुम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा अर्क तैसा शोक सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानक को गुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर रखे तैसा तिन आओ आपे करण करावन जोग प्रभावै सोई फनोग पसरिया बंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रचि बहु विद अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद की श्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोटा तुम ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंधा ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभेगा तुम निकोर कई कोट पर दर्प को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाए कई कोट परदेश परमाए जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शस्य सूर नक्षत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेश स्वर्ण थीवे कई कोट जकिनर प्रसाद कई कोट भूत प्रे सुकर मृगा सब ते नेर सबूते दूर नानका अपलिप्त रया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवे मरे कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तय तय राखी नानक सब किच प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्मै पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट कहानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पस्त्र उपासार सदा सदै के कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते हुए प्रमाय समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो तात्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पैसा सदही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह सुमावे अपने जन को आसा सा सुमारी नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवे कह दूसर ना ही कोई नान किस बलिहार ने जल थल महियल सो इष्टपदी करण करावन करना जोग जो तिस्पावे सोई होग किन में थाप थापन हार अंत ने किस पारा वारा हुक्मे तार कर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निकरंग प्रकार कर कर देख अपनी वडियाई नानक समय रहा सुमाई प्रभावे मानुगत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभावे बिन शास्त्र राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे प्रभावे ता पथ सुधारे आप करे अपन विचार है दुहा श्रिया का आप स्वामी के लैविक सयंत्र जामी जो भावे सुकार करावे नानक दृष्टि वरण आया वह कहो मानुक ते क्या होया वह जो तिस भावे सोई करावे इसके हाथ हुए था सब किसी ले जो तिस भावे सोई करे अन जानत विख्या मैं रचय जे जानत अपना बचय पर मैं भूला दै दिशा वह निमक मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दिश कछु नया वै तिस तत्काल दा दिश प्रगटावै जा को अपनी करे बख्शीश ताका लिखा नगन जगदी जीव बिन सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीव दिख बढ़ाई इसका बनाई साथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सुई पुंथियो कब हूँ ऊंच नीच में बसे कबू सोग हर खरंग हसे कबू निंद चिंद विहार कबू बकाश बयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबू नृत्य करे बपात कबू सोए रह दिन रात कबू माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कब हूँ हुए वह बड़ राजा कब हूँ पेखारी नीच का साजा कबू कीर्त में आवे कबू भला भला कहा वह ज्यो प्रभु रखती भी रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मून धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख्यान कबू कीट हस पतंग हुए जी यानक जो भरमै भरमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवै न जावे जो दिसभावे सोए हुए नानक दूजा वर न कोय कबू सा संगत उपावे सस्थान ते भौर न आवे अंतर ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रखिए करांग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए कटाना त्यों जुति संग जो समाना मिटके गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले इष्टवधि जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होत स्वान जो जान में जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आपसको कर्मंत कहा वै जन्म मरै बोजुन परमा वै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुई कर गरबावै तिन समान का संग न जावै बोल कर मानुख ऊपर करे आस फल भीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हो जाए प्रसमंत किसे न बदया अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटा विमान सो जन नानक दर गै परवान कूट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरथारे इनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतारण के जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दर गय को कैसे गवै आपस को जो भला कहा वै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व किरी जाका मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ हुए तब इसको सुख ना ही कोई जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता दब चार है कुबैरी मीत जब तार है कुबैरी मीत तब लग निश्चल ना ही चीत जब लग मुंह मगन संगमाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लग कोटतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे भोग भिख्या की करे न तृप्तावे खब कमरे बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ वृत्ति सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृश करे तैसा हो आपे आपा प्रभ सोय जो किचकिन सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे विवेक आपै एक अपै अनेक मरे न बिन सयावे न जाय नान सदी रह समाया पदिश समझे आप अपे रुचे सब कै साथ आप किनो अपन विस्तार सब का चुस्काव करने हार उसते बिन कहो कि जो ए थान तेरे कैसे अपने चलताप करने हार को तकर रंगा पार मन में अमन अपने माहि नानक कीमत कह न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने बख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मद किने बिरले चीना भला भला भला तेरे रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक में पाई संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कह दुखन काग ज्यों लवै संतन कह दुखन सर्प जोन पाए संत कह दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कह दुखन तृष्णा में जलै संत कह दुखन सब को छलै संत कह दुखन ते सब जाए संत कह दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहि नानक संत पावै ताहि पीगत पाहि संत करिंदुक मात ताई, संत करिंदुक कंटिक न पाई, संत करिंदुक मात यारा, संत करिंदुक परमेश्वर मारा, संत करिंदुक राज तेहीन, संत करिंदुक दुखियार दीन, संत करिंदुक को सर्व रोग, संत करिंदुक को सदा विजोग, संत करिंदा दुख में दुख, नानक सत भावै कस का पी होय मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत के दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावै तां लय मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहे, अपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी कवर न रखनहार, नानक संत भावै तां लय उभार, संत का दुखी यों बेल लाए, ज्यों जल विहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उचले निराशा, संत का दुख न तिष्ठे कोई, जैसा पावे तैसा कोई हो पै, कीर्तन मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करो, दिनरात सत्याओ सास ग्रास, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कूती, अपना किला करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे दिसापो नाम दे बड़भागी, नानक जन शेष लोक तजो से आनक सुरजन हूँ, सिमरो हर हर राय, एकास हर मन रखो, नानक दुख भरम पो जाए, सुपदि मन की टेक वृति, सब जान देवन को एक कै भगवान, इसके दिया रह गाय, बौर न तृष्णा लग गया, आय मार रखे कुआ, मानु कह किछ नाही हाथ, इसका हुकम भू सुकोय, तिसका नाम रखंठ परोय, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय, नानक बिगन न लग गए कोय, उस्तद मन में कर निरंकार, कर मन मेरी सत व्यवहार, निर्मल रसना मृत पीयू, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनु पे ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिया हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गहना अनुकूजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एक एक एक पचाने, तुतकी उसो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिने निरंजन जान्या, गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जिस कह, सर्व लोक ते हर छन रह, तंदन कीर्तन केवल बखियान, ग्रिष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन किया सा, तिसकी कटी जम की फासा पार, वह की जिसमन भूख, नानक तिसन लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरै, जैसा सातै सा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सो दत्त सो दत्त सो दत्त सीजिया, गुरु प्रसाद त सबूजिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सुख सुखम सोई स्थूल, न कि जन्म न किच मरे, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में, अपन जुग त्रष्टा, पुताप बनासी, ना ही किच खंड धारण, तारे हो ब्रह्मंडल खपे, पुरख प्रताप आप जपाए, ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उतरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे में लय कृपाल, गुर का सब जप पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़पागै, नाम जुगत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम करमान, जो किच करै सो प्रभ कह रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुवै सो होय, करनै हर पछानै सोई, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजी तिसमाय समाय, कोई सुख निदान, उन्हों बने आए, आपसको आप दिन मान, नानक प्रभ जन एको जान, श्लोक सर्व कला भरपूर, प्रभिरथा जानन हार, जा कै सिमरन उदरी है, नानक सिज बलिहार, अष्टपदी टूटी गानन हार, गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचै कुए, तिस बिन नाही तेरै किछ काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत होय नाही मोह, प्रभु की जो सगल कट सो है, त धनवंता हुए क्या को कर वह जा सब किस तिस्का दिया दर वह सूरा जी को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह जे को हुए वह दाता तिस दिन हार जाने गवार जिस गुरु प्रसाद टूट हो रोग नानक सूजन सुधा अरोग ज्यो मंदर को थम मैं तम्बन त्यों गुरु का शब्द मन स्तंभन ज्यो पाखा नाव चढ़तर है प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे त्यों संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभु देवन हार अवर त्याग तू सचितार जो कुछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिरया जान कौन बसताई तीर संग लपट रो रसलो विपतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पद सिद्धि कर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लिहो मनमूल राम नाम हृदय में तो लाद के सुनते संचाल अवर त्याग विख्या जंजाल तन तन कह सब कोए मुखो जल हर धर गैस हुए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके शुद्ध बलिहार है चरण साध के तु तो पी वर साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा वट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाय अनेक विघंते साधु रख है हर गुण गाय अमृत रचा कह उठ गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवता धार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाई सब किस तिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सूजन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रवचीत भगत भगत सुनिय त्योलोए जा कै हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृढ़ साचा आकार सच वरतै साचा पासार उपार ब्रह्मजन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिस हे बुझाए नानका जिस हुवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तू प्रीत्याग तिस्ते पर नाही किच कोई सर्व नियंतर एको सोए आपे बिना आपे ताना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक है मने हो नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र फोर किसका मंत्र न जाने होर अनदरु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिय करता कै राज में राजुग में जोगी तप में तपेश्वर विष्ट में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मित नाहि सगल देव हारे अवगाहि पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए ऊच नीच इसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे करंग नाना भिद किनु विस्तार प्रभु विनाशी एक अंकार नाना चलत करे किनवाए पूरे पूर्ण सुलटाए नाना विदगर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उतरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाकर सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरु ते पाई सत वचन सत उपदेश सत तेजन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसो करने हार अवरन बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योति सुभावे सुवरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मात जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभु कै रंग राजन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे हुए दाते दुख कटन हार जा कै संग तरह संसार जिन का सेवक सोवड भागी जिन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत पर सुनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत्य सुनता बुजनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरुदय जिन मान्या करण कराव तिरमूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रव्याया तत् ज्ञान तिस्मन प्रगटाया भय ते निर्भउ हुए बिसाना जिस त्यो बुझिया तिस्मय समाना बस मायली बस गडाई ताको भिन्ना कहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस तया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत में तो कोई न लाक है प्रभु के सेवक का को न पहुंचे प्रभु के सेवक पूछते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भस्म करे लश्कर कोट लख है जिसका सास न काढ तापता को रख देख रहात मानस जतन करत बपात तिसके करत व्यर्थ जात मारन रख है वरन कोई सर्व जिया का रख सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबलक विडानी बार बार प्रभु जपी है पी अमृत्यु मंत्र पी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्टाया नाम तान नामो रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम राजो जंत्र तान्य मंत्र नाम मैं नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सुदकाम बोलो जस जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने शुभ रह सुमाए जो हुआ होत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कहक न जानू आठ पहर प्रभ सहजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाप मिटावे वरस्यान सगली चाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन की जो सब पैरे सलो सात पुरख जिन जाने हा सतगुरु तिस का नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सेख की गुर दुरमत मलहरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सेख के बंधन काटे गुर का सिख बकार से हाटे सतगुर सेख को नाम तंदे गुर का सिख उड़ भागिए सतगुर सेख का हल्त पल्त सवारे नानक सतगुर सेको जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आप उसको कर कह न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा कर वे ने कमी तिसको प्रासमी
1: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰੇ ਦੇ ਹਰਨਾਉ ਅਣਪ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ ਸਰਬਨਦਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਆਪ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਤਿਆਰ ਨ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਏਕ ਪਨੀਤ ਪਰ ਸਚਰਨ ਕਰ ਨਿਰਮਲੀ ਪੀਠ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦਰਗੇ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਖਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅਵਰ ਦਿਸ਼ਟ ਏਖਿਓ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬਿਨੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਪਾਏ ਉਸਤ ਅਨੇਕ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪੌਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਵੇ ਗੋਚਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਕਾਹ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੀ ਨ ਪਾਈ ਅਨ ਭਗਤ ਬੰਧਨਿਤ ਕਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸ ਪ੍ਰਜਪਣੇ ਇਹ ਵਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਬਨਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪਰਗ ਕੇ ਗੁਣਤਾਸ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰੇਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਦੁੱਖ ਤੇ ਐਨਾ ਸੇ ਤਉ ਤੁਮੈ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਅੰਧ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਦੇਸੇ ਸਾਲੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬੇਸੇ ਪਹੁ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਪੋਇ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਰਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮ ਗਮਨ ਸੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ।

0: आसन जा, एक पवंत एक को एक, एक अर्याप पूर्ण पुर रहो प्रभ्याप, अनक विस्तार एक ते पे, एक रात प्राप्त गए मंथन अंतर, एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, पर्या तो सरनाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवधान, कर कृपा देव हर नाम, साजना के मांगो तुर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पुर, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, साल साथ प्रभु तुम्हें त्याओ, चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत, एक कोट एक आधार, नानक मांगे ना प्रसार, प्रभु की दीट महासुख होए, हर्ष पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जान तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डलाने, सो पर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाऊ साज के संग, परे शरण आण सब त्याग, अंतर प्रकाश अंधिम लाग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुखोए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत ले, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक इनू सदा निहाल, बंधन काट मुख जन पया, जन मरण दुख परम गया, इच पुण्य सरदा सा पूरी, राव रिया सत्संग जूरी, जिसका सा तिल लिया मलाई, नानक भक्ति नाम सुमाई, सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे ये जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाके, सो क्यों बिसरे ये बिखते काटे, जन्म जन्म का टूटा गाड़े, गुर पूरे ताते बजाया, प्रभु अपना नान जन त्याया, साजन संत करो एक काम, आन त्या जपोर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाओ, आप जपो औरे नाम जपाओ, भगत पाए तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सीशार, सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूट जात पाए बसराम, सगल दुख का होत नासु, नानक नाम जपो गुणतासु, उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर यही सौ, नेत्र पेख दर्शक होए, मन बिकसे साचर तोए, भक्त जिना के मन तरंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजिए करमया, गुर प्रसाद नाम जप लिया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रिया सर्व समाए, प्रभु क्षण दीन दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, नाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा कृपाल, आज पुरुष कारण कृपाल, भगत जना के प्राणीदार, जो जो जपे सोए प्रनीत, भगत पाए लाए मनीत, हम निर्गुण आर नीचे जान, नानक तुमरी सरन प्रभुवान, सारे बेमुक्त मुक्त मो पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अणकरार पोग पड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, वो भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पढ़ी सुकरने सुभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग दियो निवास, सर्व सु नानक प्रगास,
1: अपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टिता, पापुन तब कहते हुता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संकमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सो कहो किस है व्यापत, जब अपना पापार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम, अपन खेल आप वरती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किस को गनी, जब एक रगम पार, तब नरक सुर को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई, तब शिव सकत कहो कित ठाई, जब आप है आप अपनी जोत तरह, तब कवन निडार कवन कत डरे, अपन चल ताप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार, अविनाशी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अविगत गोचर प्रभ का, तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा, जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे, आपन आप आपी चर जा, नानक आपन रूप आपी उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तह चल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तै किसै भूख कवन तृप्तावै, करण करावन करण हार, नानक करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आप है परवीन, तबेद कतेब का कुचीन, जब अपने आप आपुर तारे, तो सगन अप सगन का विचार, जय अपन ऊच अपन अपनीरा, ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, विस्मन विस्म रहे विस्म

जा कह दृष्टारु अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारु अपहे का विस्तारु जात सुपावे ता सृष्ट उपाय अपने पाने ले समाये तुम ते पिन नहीं किछ होए अपन सूत सब जगत परोए जाकु प्रभ जीव आप बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जिता जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनु बिसारे तिस तजवर कहा को जाए सब सिरेक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप

परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अन दिन पूजह गुर के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभया पहमेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्र परमानंद।

नाम जपत मन होत सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसे सुहोत निहार, ताके निकट नायावत काल, अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया सलो।

मन प्रगास अष्टपदी संत संवंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माहे अनिक रंग नाना दृष्टाहे नौ निदमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनात कह न जाइए चर्ज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत

जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माही, चार कुंट दह दिसे समाही, तिस्ते भिन नहीं कोठाऊ, गुर प्रसाद नानक सुख पाऊ, वेद प्राण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आपड़ो नक बहु डोले, सर्व कला कर खेल खेल, बोल न पाइये गुण अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार हो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नासु, नानक तिन में इहो विसास, संत जना का

सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एक अंकार, अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आपा भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूतावर तारा, सर्व नैना पिख नहारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जसु आप ही सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कै मद अलिप्तो रह।

संत जिना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु साध संगगन सागर तरहु हर तन के भर लेहु भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारु धारु जीव गुण गोविंद अमृत रस पीयु चित चितवो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धारु उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हिरतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लुक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाथ वजै सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे

ताकी गत हुए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपरासा संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै। जाके मस्त कर्म प्रपाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुन लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभु जीत। जन्म मरणता का दुख निवारै, तो लभ दे तत्काल उधारै।

सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होहे ता एक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मे होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मे बखसीस एक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमें कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादर हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहौ नानक विगसै वे प्रवाहौ साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखै मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया सुमाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा हुर दसुणी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चले सब कोए चंगा नाउर खाए कै जासु कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई तवात ना पुछै के कीता अंदर कीट कर दोसी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत धवल आकाश सुणै दीप लो पाताल सुणै पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास सुणै ईसर ब्रह्मा इंद सुणै मुख साला हनुमंद सुणै जोग जुगत तन भेद सुणै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास सुणै सात संतोख ज्ञान सुणै अठ सठ का इसनान सुणै पढ़ पढ़ पावै मान सुणै लागै सहज त्यान नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास
सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पातशाह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे अशगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गात कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरे तारे गुर सिखो, मन्ने नानक पवे न पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचै सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कहे करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै हो वै सचियार, तबलै ऊपर के तापार, धरती होर परै होर होर, तिस ते पार, तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया गुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया किता होए, किता तान सवाले हो रूप, केती तात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लाख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुद पावे है साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश माल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरां सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सोके, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो, तीरथ तप

कवण से रूपी महाकवण जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण थेत वार ना जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आख एक दो एक सियाणा वड़ा साहिब वड़ी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपौ जाने अबै गया ना सोहै पाताला पाताल लाखो आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असुलु एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड़ा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाइया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिया है समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जेत समन होना विसरा है अंत न सहती कहण न अंतो अंत न करण देण न अंतो अंत न वेखण सुनण न अंतो अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै परावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड़ा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तैस ऊंचे कौ जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए किते मंगह जोद अपार किते आगणत नहीं विचार किते खप तुटहे बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाण होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केरी के जिसनु बख से सिफत सलाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बखशीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है ब्रह्म आख है इंदो आख है गोपी तै गोविंदो आख है ईश्वर आख है सिद्धो आख है किते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव किते आख है आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते कीते होर करे हे ता आख न सक है केई के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर का वारा का वार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारे किते राग परी स्यों कहियन किते गावण हारे गावै तुहन पाउण पाणी बै संत्र गावै राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पायाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे थारे सही तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई
है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुकम ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेबो नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की कर है बेपूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आवह पाग आदेशो तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेसो एक माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ऊना नदर न आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेसो आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेसो एक दूजी बौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश एक राह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखाय सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तथाय सोहन पंच प्रवाण नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानको गया जाप जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी बै संतर केते कान महेश केते भरमे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेसो केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहै पिछै पछताए तिथै घड़िए सूरत मात मान बोध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहे ना ठाके जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लू करे आनंद सच्चा मन सोए साच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै ता अंत ना अंत
तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत ते तटालो घड़िए शब्द सची टकसाल।

सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले।

बेभोगत प्रभा है, अन उगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेघ है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, आजाद है, चरपट संतो अप्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणंग, सर्वंप्राणंग, सर्वंकर्मंग, सर्वंतर्मंग, सर्वंयुक्ता, सर्वंमुक्ता, रसावल छंद तो अप्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातुं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वप्रसाद। के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमें सो सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के उसनल चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करहीम हैं, के रोजी दहेंद हैं, के राजक रहेंद हैं, क्रीमल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, ग्रीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, हरासुल फिकन हैं, कलंकं प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, कि नरकं प्रणास हैं, बहसुल निवास हैं, के सरबुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, आदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीन जमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमल कमाल है, के जुर्त जमाल है, के अचलं प्रकाश है, के अमितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो बेपूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलं अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार संतो प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम, अरबर अगंज हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम मुमन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुभव अनाश मुनमन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम, अनशेज अंग वासन अपंग, उपमा अपार गतमित उदार, जल थल अमंड दिसविस अपंड, जल थल महंत दिसविस बेअंत, अनुभव अनाश त्रेत तर तुरासु, आजान बाहु एक सदाहु, ओंकार आद कथनी अनाद, खलखंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चेत चरण नाम, अनछे जुगात आज जिना बात, अनचा जुगात अनरंज बात, अनठट पंडार अनठट अपार, अडीट धर्म अतटीट कर्म, अनब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद। करुणालय है, अरकालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उभारण है, त्रेत के प्रण है, जग के करण है, मनमान्य है, जग जान्य है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वम्ब्र है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, पर ते पर हैं, करुणाकार हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृताकृत हैं, तरणीकृत हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नर नायक हैं, खालकायक हैं, विश्वम्ब्र हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, भव भंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हरताहर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म वस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो तिहान तिहाने,
नमो ज्योत ज्योते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसो आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनाश आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अठा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे इंद्र कामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बिभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे ओ घर जोग जति के सुर सुरारदन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे ओ मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तो रंग कुरंग से कूदत पाउन के गाउन को जात निवारे भारी पूजान के भूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे केते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिनो अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेखा है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान सबान के पेखा है पाउन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखा है सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेनो त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारै सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गड़ गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दान वदेव फने दिन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पूंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअम्र साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पतो अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पात के परस है पाग ते नर फिर न तिहे तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फ्रियो लिये सात समुद्रन लोक गयो प्रलोक गवायो बास पियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं कहू पशा को सीस निवायो
कोउ भूतान को पूजत है पाश कोउ मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चेत की इच्छा तब चरण न मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दोष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोह रक्षा निज कर दय करियै सब बैरन को आज संग्रियै पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याहूं जो बार चाहूं सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरे है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जबन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार ते सही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असतुला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निरलंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीन तो नह पेव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है देती तुम्हारा लखा न जाए पसारा किह बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीने उत पूज खान बहुर राच दीने कहूं फूल राजा हवाए बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय हाय ताके काल निकट न है आय हाय रक्षा होए ताहि सब काला दोष्ट अरिष्ट टरै तत काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दोष्ट शाह श्वाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दय ले हो उबारी सर्ब ठाउर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई
कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शोभ राता केल बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री अस तुज जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुर सुना पावई सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहा हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहा चौपाई संबत सत्राय सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो सब तोहे बखाने हो दोहरा सगल द्वार कहो शाड कह गहे तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कहो शाड कह गहे तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द उता गावह हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारना सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा है घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कण टुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख होआ तित घर अनहद बाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया इस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल वेखो कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिन का मोह टुटा तिनका शब्द सच्चै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै तां सो जन दे जिसनू होर क्या करै वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसो एक नाम लाग सुवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आवहु संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी
करहै कहानी अकथ केरी किरत दुआरै पाईऐ तान मान धन सब सौंप गुर कौ हुकम मन्नै पाईऐ हुकम मन्ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो हो संतो हो कथे हो आकाथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया त मोहनी किने कीती जिन ठगौली पाईया कुरबान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै ना ही तेरे नाले साथ तेरे चलै ना ही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणै आखै ता वेखै सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तो दु उपाए एक वेख पर सुन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां हां केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार काज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्ने ओहो तिखी वालहु निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली ज्यों तू चला है तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए तिवै चलै जिना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ध्यावहे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहों लिखिया आया एक फिरा है कनेरे कर है गल्ला गल्ली किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों

सूरज पैर से चंद तो करोड़ी चलते नयन पैर सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैर चढ़ाने आकाश पैर

ना पतीजै तो क्या कीजै। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी संगत, उत्तम श्रेष्ठ भाग ने जिनको कृपा करत है गोबिंद ते सतसंग मिलात। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अपार बख्शिश हुई है। आप गुरसिख संगतां नूं वाहिगुरु ने अमृतमई बख्शिशां दे नाल निवाजिया है। अमृत वेले गुरु की चरण सरण पहुंच के गुरु के दर्शन और अलाही बाणी का आप आनंद माण रहे हो। सतगुरां ने मेहर कीती है, अमृत वेले अपने तख्तां ते प्रकाशमान हो के पवित्र दर्शन और सारी संगत दे लई सांझा हुक्म मुख वाक सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश किया, जो आप जी ने श्रवण किया है। अलाही बाणी का नितनेम और अलाही बाणी का रस भिन्ना कीर्तन श्री आसा जी की वार का आप श्रवण कर रहे सी। हाजरियां भर रहे सन गुरु प्यार वाले सत्कारयोग हजूरी रागी जथा भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी गुरदासपुरी। समा है गुर शब्द की विचार का। अज सिख कौम लई एक महान पवित्र दिहाड़ा है, श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना दिवस है। अज दे शुभ दिहाड़े छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने बड़े तेज प्रताप दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की। कथा विचार श्रवण करांगे, रसना करिए पवित्र प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री।

नारक तुमरी कृपा में सुख कोई न जाने तुमरा उचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूतर तुम ते हो।

रहना ख्वार हुए सा मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे

वेण सतगुर की शरणाय, सतगुर मिले उल्टी पही, कहना किछु न जाय, भणत नानक।

नदरी शब्द वसै मन आय, नदरी हुक्म बुझिए हुक्मे रह समाय। जिन जिहवा हर रस न चख्यो, सा जिहवा जल जाऊ, अन रस सा

अंतर जोत जगाई। नानक मन मुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए। वडहंस महला तीजा सोहागणी सदा मुख उजला। गुर कै सहज सुभाए

एको सच वर्तै सब अंतर, सबना करे प्रतपाला। नानक इक्स बिन मैं अवर न जाना, सबना दीवान दयाला। वडहंस महा

जित प्रभ मेला रहाओ, लाख भगत जा को आराध है, लाख तपीसर तप ही साध है, लाख जोगीसर करते जोगा, लाख भोगीसर।

मैं सर्व सुखा सुख पाया अमली, फिर सर्व रहया भर पूरे, जन नानक हर रंग माणिया अमली, गुर सतगुर कै लग पैरे वड़ा।

ज्यों भावै त्यों रखसी आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा मनुआ दह दिस धावदा। ओह कै

आए मन मुख भूले भिख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द न पाया मुख

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया वारी।

हर वर सुहागू मस्तक भागू सच्चै शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए हर वर सुहागू मस्तक भागू सच्चै

गुणति अरसो गुणति जल जो गुणति बहुपात पचा सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरे गोहो हर नाम का ओला तुझे माला गए ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण किती हम जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभ के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभ की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानुप्रभ के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल वर्तित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करिए सत्कार्यो ज्ञानी वरिंद्रपाल सिंह जी उन्हों पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण करिए गुर इतिहासिक इतिहास सरुण करिए दस लो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारी। कहते हैं ऐसे गुरु को सानू बलहार जाना चाहिए जिसनू नारायण नरपत नमस्कार। सारा ब्रह्मंड उसनू नमस्कार करता है, उसनू पूजता है, उसका ध्यान करता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अपने इस पावन शब्द राही सानू समझाना करते हैं कि भाई जी की बिरथा होए सो गुरु पहे अरदास कर। जद भी कोई गल हो गई तेरे मन के अंदर तू गुरु के कोल आके बैठ के उस अगे अरदास करनी है। वो इना समर्थ है कि तेरे मन की बुझ के ते मन की पूरी भी कर देगा। ऐसे गुरु तो आपू बल खा जाना चाहिए आप मुक्त मोहित